जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण शुभराता किलविक शक्ल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शय करता श्री अस्तु जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वाशत फल पावे सोई दुख न दिसै व्यापत कोई अडिल सुने गुंग जो जाहे सुरस ना पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौ निकट

0: निकल के आता हूँ, आप कहीं जाना नहीं है, क्योंकि अगर आप चले जाएंगे तो फिर वो घर को लेके जाएगा।
1: क्या जा जा देरी करा।
0: ओके आप जाना नहीं कहा, हिलना नहीं आज क्या हम कहीं।
2: No one plays more of the beats you dance to but East FM.
3: East FM.
2: Kenya's premier Asian mix. Asian mix.

0: also, I feel like I'm also coming across people who love it. They're like, no, this is me. I am who I am. Yeah, this is me. Even in my bio, you can tell me that. I love my drinks. Don't stop me. And that's why.
1: Number six
0: is...
2: यारो मुझे मुआफ करो यारो मुझे मुआफ करो मैं नशे में हूँ बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम पी लीजिए हमारे हाथ से दो चार जाम पी लीजिए पिलाए जब कोई माशूक अपने हाथों से

0: सिर्फ दिल टूटा है सांस नहीं धड़कनों में रवानी अभी बाकी है प्यार का किस्सा खत्म हो गया तो क्या जिंदगी की कहानी अभी बाकी है
1: ए दिल तोड़ के
2: Your favorite

0: तुम किनारा कर गए, छोड़ गए मुझको बेसहारा कर गए। तुम चाहो तो भी ना मिल सको, थे हमदर्द मेरे, बेदर्द बन गए।
1: Your favorite